0: बुका पिएर कबु पेन्सिल कबु झनै फटाका आजी काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान नि हेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोलै फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन भो ओटा कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरे थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठिनी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602004
10: विश्रामपछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ अब पालो जनआवाजको स्थानीय तहबाट विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरिन्छन् आजको जनआवाजमा हामीले जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पाएको सेवा कस्तो लाग्यो भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं
11: बेलबहादुर चौधरी जानकी 5 अमौरा देखी आता जो कुछ सेवा ग्राहक सब सीख रूलक है तालीम चले की आता है बाटो घाटो तो अब वैसे के खासे तो नहीं आयल हो भी ना बाटो घाटो तो हुई थी बा ग्राविल और आविल के गेहूं के बिया धान के बिया फिर अभी योगदान चलती रहा अब सेवा तो देती रहता है
12: पटराम कठरिया जैसे बात ठीक है बाबा एक बोली व्यवहार तो ठीक है बाबा जैसे अब लाओ आयल के भरना है जाना नहीं गई हूँ
13: समाज चौधरी हो जानकी 5 अमौरा अब हुई ना तो गेल साल में हम उनके मंदिर के लिए हमारे झोंक लगे रही तो मंदिर में डाल पैसा सड़क में डाल देने मंदिर में पैसा एक पैसे नहीं देने असम 1,00,000 रूपये दे लाते 1,00,000 रूपये में हमारे को जो कर अस्ते हो चलत आवे गडर बडर हमार सबसे कमजोरी हमारी वो रबा है टेम कबो हो जाए कबो नहीं हो पाए
14: मान बहादुर चौधरी सेवा तो अब कह पड़ा वहाँ जेबी तो अब जाकर गैले से तो उग जेबी तो कर देता है काम नहीं करना बात नहीं हो अब कोई कोई बेला में जेबो तो अब नहीं रहता है तो अब नहीं भेंट हुई नहीं तो अब उड़ी नहीं हुई तब एक चुटी नमगुर जाट हुआ हो अब जेबो तो अब काम तो करते हैं अब बीज बिहन अब का चीज अब समय समय में फे हुई ना तो दे वितरण कर ले
15: बिया बाली फेन दे अब ये गहुँ फॉर्म लगे
16: प्रेम लाल थारू पथरैया बढ़िया तो हो तो मशीन तो मान ले की गड़बड़ा जाए तो थोड़ा लेट हो जाए ना वो हाट के करना मुंह से कहना तो थोड़ा तो विवे कर ले
17: मोर चित्र निर्भर तो रहे नहीं कर मालपोत तो गए लाती बढ़िया से बुझ ले आता है ना
10: अब खेल समाचार तेस्रो संस्करणको एसएससी प्रिमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा आज नेपाल र युएई भेट्दैछन् नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल मलेसियाको कुआलालम्पुरमा अहिले बिहान 7:15 शुरू हुनेछ दुवै टोली दोस्रो पटक एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छन् नेपालले सन् 2023 भएको पहिलो संस्करणमा युएईलाई 7 हराउँदै उपाधि हात पारेको थियो यसपटक भने उपाधि विजेता टोलीले मात्र एसिया कपमा स्थान बनाउने भएकोले फाइनल दुवै टोलीका लागि महत्वपूर्ण छ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल र युएई बीच हालसम्म 19 खेल भएका छन् जसमा नेपालले 11 र युएईले 8 खेल जितेका छन् पछिल्ला 5 खेलमा नेपालले 3 खेल जितेको छ यस्तै पहिलो संस्करणको नेपाल भलिबल लीग एनबीएलको फाइनल खेल पनि आज हुँदैछ फाइनल प्रवेशका लागि पनि आज खेल हुँदैछ। काठमाडौँ र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा साँझ 6 बजे खेल हुनेछ। नेपालमा पुरूष भलिबलको फ्रेन्चाइज लीग पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। भदौ 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 20 लाख रूपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यसै समाचारसँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जानकी जेसिसद्वारा रसुवाबाड़ीमा बेपत्ता भएका 4 परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 नगद सहयोग। आज 5 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। बाल दिवसको अवसरमा टीकापुरमा चित्रकला प्रतियोगिता। प्रतियोगितामा सरस्वती मावि वनगाउँकी छात्रा अनुश्री कडायत प्रथम। कैलालीमा किटजन्य रोगको संक्रमण देखिँदै किटजन्य रोगबाट बस्न विशेष गरी लामखुट्टे नियन्त्रण र सरसफाईमा ध्यान दिन स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको आग्रह। र एसएससी प्रिमियर कपको फाइनल खेलमा आज नेपाललाई युए भेट्दै नेपाल भलिबल लीगको फाइनल पनि आजै। हवस् त अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर सावत विदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रोग्राम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
18: कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए। फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो। के गर्ने होला, घरमा पुरुष पनि छैनन्।
19: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको। कोही चाहिँदैन, फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि।
18: कता छ त त्यो?
19: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न, तुरन्त आइहाल्छ नि।
18: फोन नम्बर कति हो भाइ?
19: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620-20300 हो। अर्को पनि छ 98-65-69-20-26।
18: तपाईँको पनि टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सप्पी, राजापुर, गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97620-20300 र 98-56-92-026।
20: दाई बेड भुक लाग्ता, खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
21: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसनले छाइट भारी हो स्याकल बाजे। आप हली भुवास कर दिए परल है, समय में भुवास कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना।
22: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुवास कर दे मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर फिर डोरे नी चहटू दीदी। मई चाहे ई बाल विवाह करनी चहटू, ई बाल विवाह निकरण दीदी।
23: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डायो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत। ऊ हिंसा के शिकार बन सकत। उही है विद्यालय छाड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती। ऊ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई। असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकत। ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
18: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 से देगिलक जनहितमा जारी सन्देश।
24: जय भोली, जय भोली, बम बम भोली।
25: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली टिलरी, छड्के टिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
18: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली। संचालक देव बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 98-68-40।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाय
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: टीकापुर नगरपालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं
5: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं
4: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ
5: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गरौं टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
4: टीकापुर नगरपालिकाको सूचना
5: टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौ
4: नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन
5: कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो
4: त्यसैले कर तिरौं सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिउँ
5: समयमै कर तिरौं जरिवानाबाट बचौं
4: कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 0915608383 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्टी रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी जेसीसी रसुआ बाड़ी में बेपत्ता हुईलक 4 परिवार प्रति परिवार 10,000 नगद सहयोग। आज 5 प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना। बाल दिवस के अवसर टीकापुर में चित्रकला प्रतियोगिता में सरस्वती मावी बनगांव के छात्रा अनुश्री घडायत प्रथम। एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में आज नेपालो यूए भिर्ती नेपाल भलिबल लीग के फाइनल में फिर आज जानकी जेसिस रसुआ के भोटे कोशी लड्डे में अलग बाढ़ी से बेपत्ता हुईलक परिवार प्रति परिवार 10,000 आर्थिक सहयोग कलबा। डांचे हुईल से फिर संपर्क विहीन के खोजी तथा उद्धार कार्य में सहयोग पुगेना उद्देश्य लेके सहयोग प्रदान करगिलक जेसिस बटुलबा। रसुआ के भोटे कोशी में भदौ 10 गते अलग बाढ़ी के कारण जानकी गांव पालिका के 4 जना सम्पर्कविहीन रहलबाट। जानकी जेसिस पालिका के समुदाय ओ बजारमा संकलन कलक खाद्यान्न राहत पठा सेकलक जनैलबा। अब संकलन हुईलक राहत सामग्री नगदमा परिणत कैक नगद प्रदान कलक जेसिस के अध्यक्ष अनिल कुस्मी जानकारी देलबाट। वहाँ यी विपद के घड़ी मन सहयोग तथा सहकार्य करल हुईलक दुर्गौली बजार व्यवस्थापन समिति दुर्गौली गांव समाज टीम स्टार क्यू दुर्गौली के युवा हुक्रा लगायत के व्यापारी समाजसेवी सकुन धन्यवाद देलबाट। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस के अवसरमा टीकापुरमा चित्रकला प्रतियोगिता हुइलबा। महिला जागरण बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको आयोजनामा हुइलक चित्रकला प्रतियोगितामा सरस्वती मावी बनगाउँके छात्रा अनुश्री करायत प्रथम हुइलबाट। नौठो विद्यालय के बाल बालिका सहभागी हुईलक प्रतियोगिता में जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय के संजना चौधरी दीर्ते जनजागृति मावि सीतापुर के रियन चौधरी दीर्ते और कालिका आधारभूत विद्यालय के पुष्पा सुनार सान्तोना स्थान हासिल करलबाट। सहकारी आपन विद्यालय हमार विद्यालय मजा विद्यालय शीर्षक में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना करलक हो। प्रतियोगिता में विजय विद्यार्थियों को न पुरस्कार वितरण करगिल बा। प्रतियोगिता में प्रथम हुईल पाछ सरस्वती मावी बनगांव के छात्रा अनुश्री करायत असीन कार्यक्रम से आपन हुकना हौसला मिल्ला बटुलबाट। सहकारी संस्था के अध्यक्ष राधा रावल विद्यार्थी के क्षमता अभिवृद्धि और सकारात्मक विकास के लिए कार्यक्रम करगिलक जनैलबाट। सहकारी के सचिव रेशमा तिमिल सिन्हा सहकारी से वार्षिक कैलेण्डर अनुसार कर्जिना कार्यमन हरेक वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम करना बटुल कर्ती ऐलक बटुटी यह वर्ष चित्रकला आयोजना कलक बटुलबाट। चित्रकला कार्यक्रम के संयोजक भागीरथी बम शाह चित्रकला के माध्यम से अपन प्रतिभा कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना कर अपना वहां बटुलबाट। चित्रकला प्रतियोगिता के निर्णायक ज्योति विश्वकर्मा विद्यार्थी चहलक विद्यालय कसिन हुई परट कनाहू कन के कल्पना चित्र मार्फत प्रस्तुत देहक लगी करगिलक कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुईलक बटुलबाट। वहां चित्र से धीर बाट बोलना देखना वो संकेत करना बटुलबाट। सहकारी समय समय में विभिन्न सामाजिक कार्य करती टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय युवा कवि मोतीराम भट्टके 161 जन्म जयन्ती मनैलबा। मोहन उपाध्याय के अध्यक्षता में हुईलक कार्यक्रम में साहित्य कला परिवार के उपाध्यक्ष कंठराज गिरी सामुदायिक पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष तथा सलाहकार तारा प्रसाद जैसी देवकोटा साहित्य परिवार के अध्यक्ष बलबहादुर राउत लगायत मंतव्य ढल रह कांति प्रसाद गेवाली से स्वागत करल हुईलक कार्यक्रम दीपक बोगती संचालन कल रह। आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस बसाईसराय के सन्दर्भ में प्राथमिक उपचार कना नारा के संग मना जैतीबा। विश्वभर विभिन्न कारण से आंतरिक तथा बाह्य बसाईसराय बहर्ती गैलबा। नेपाल मफे विपद बाढ़ी पहरो तथा अन्य आकस्मिक घटना तथा अवसर के खोजी में मनी बसाईसराय कना करलबाट। यह अवसर में नेपाल रेडक्रस सोसाइटी से शुक्रवार जारी विज्ञप्ति में नकलबा की बसाई सराई यात्रा सहज निमित यही मुना विभिन्न बाधा व्यवधान आइस्याकट जस्ता अनिश्चित जीवन अवस्था जीविकोपार्जन के उपाय नै होइन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के पहुँच मना अवरोध जोखिमपूर्ण मार्ग के प्रयोग भाषा संस्कृति भौगोलिक अवस्था आदि के जानकारी नै होइन प्रशिक्षण के अभाव आदि के कारण बसाई चनाकना मनिनमा एक्लोपन चिच्याहाट थकान मानसिक दबाव स्वास्थ्य स्थितिमा गिरावट बिरामीपन अनुभव मानसिक तनाव इस्याकट अवस्थाकन बसाई सराई करुया हुकन डिहाइड्रेशन हाइपोथर्मिया कुपोषण थकान आघात जन्ने चोटपटक दुब्ना असुरक्षित काम गर्ने अवस्था ओ मनोवैज्ञानिक पीड़ा जसिन उच्च जोखिम कलग्ने हो क बसाई सराईके विभिन्न चरण मना सामना करापना शारीरिक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार बारम्बार हिंसा जसिन बाधा व्यवधान के सामना कर पर्ना हुइस्याकट यी अवस्थामा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञान वा शिक्षे घाइते तथा बिरामीनके तत्काल उद्धार स्वास्थ्य अवस्था विग्र नै दिए वा जीवन रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न विज्ञप्तिमा उल्लेख बा विज्ञप्तिमा कैगिल्बा महामारी दुर्घटना विपद द्वन्द तथा अन्य आकस्मिक परिस्थितिमा प्राथमिक उपचार सेवाकी आवश्यकता निरन्तर बढ़ती रहक सन्दर्भमा हालै भोटेकोशी बाढ़ीके समयमा नेपाल रेडक्रसके प्रशिक्षित स्वयंसेवक हुँ र प्राथमिक उपचार मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा प्रतिकार्य के अन्य गतिविधि लगायत मानवीय सेवा प्रदान कै कैयाकर महत्व थप पुस्तिकालबाट नेपाल रेडक्रस नेपाल सरकार के सुरक्षा निकाय संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था कूटनीतिक नियोग औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र लगायत सरकारवाला हुकनसे समन्वय व सहकार्य साझेदारी कर्ती प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रबन्धनात्मक प्रशिक्षण तथा सेवामूलक कार्यक्रम संचालन कर सेक्लसे सकुनमा प्राथमिक उपचारके पहुँच पुगाई प्रयासरत रहलक जनाकिल्बा यी अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बसाई सराईके सन्दर्भमा प्राथमिक उपचारकना नाराहना आत्मसात गर्दै प्राथमिक उपचारके ज्ञान सिपो अभ्यासन व्यापक बनाई तथा हरेक घरमा एक प्राथमिक उपचारकर्ताकना अभियान सार्थक बनाई सकुना आह्वान गर्दा विज्ञप्तिमा कैगिल्बा जीवन रक्षा अभियान योगदानमा नपुगिन सम्पूर्ण प्राथमिक उपचार प्रशिक्षक तथा स्वयंसेवक हुँक्रप्रति उच्च सम्मान गर्दै व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिह चाहथे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देगिलक बजेट शून्यताके अवस्था अन्त्यकर बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल आगा बढ़ाई सर्वदलीय निर्णय हुल्बा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालयमा बैठक सर्वदलीय बैठकसे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कर्क बजेट निर्माण के काम शीघ्र आग बढ़ाई निर्णय कर गिलक हो बैठक मन प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व कना विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हुक्र सहभागी रह लम्मा समय बजेट शून्यता कायम रहबेर प्रदेश सरकार के नियमित कामकाज और विकास निर्माण प्रभावित हुई सकना बटुटी बजेट निर्माण प्राथमिकता के संग आग बढ़ना सहमति हुईलख प्रदेश के वर्तमान आर्थिक अवस्था ध्यान में धरते आवश्यक प्रक्रिया पूरा करकन बजेट लाना निर्णय करलक बैठक पाछ जनाकिल्बा सर्वदलीय सहमति पाछ प्रदेश सरकार बजेट निर्माण तथा उही से संबंधित कानूनी प्रक्रिया आग बढ़ना डगर खुललबा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनी बाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
2: त एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
1: हो र तर त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार घेरामा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
1: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
0: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश टिकापुर
3: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
6: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, संचालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868 40

0: खोज खबर म फेरफे स्वागत बा। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा। हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास में न रहल बा। जैकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया बदरी लागल बा। कोशी मधेश लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के दांचे ठाउँ हल्का ठेसे मध्यम वर्षा हुईटी रहल बा। आज दिन का देशभर साधारणतया बदरी लगुआ बा। देश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग के ढ्यूर ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोशी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ ठाव व मधेश प्रदेश तथा बागमती व गंडकी प्रदेश के तराई के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोशी व बागमती प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग तथा गंडकी और कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के संग लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के संभावना बा। आज रात का देशभर साधारणतया बद्री लगुआ बा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव में तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। देश के तराई भूभाग के दांचे ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोशी प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना बा। नागरिकता व जन्म दर्ता के विषय बारे विद्यार्थी प्रारंभिक जानकारी देना उद्देश्य लेकर धनगढ़ी स्थित क्रिसेंट सिटी स्कूल मन कक्षा 7 के विद्यार्थी के लागि एक दिन सचेतनामूलक कार्यक्रम होरैल बा। नागरिकता प्रभावित मने संजाल सीएपीएन के आयोजना मन हुईला कार्यक्रम में कक्षा 7 के 75 जना विद्यार्थी सहभागी रह। कार्यक्रम में विद्यार्थी जन्मदाता के महत्व और प्रक्रिया, नागरिकता की आवश्यकता और प्रक्रिया, कानूनी पहचान, नागरिक अधिकार और जिम्मेवारी लगायत के विषय में जानकारी करागिल रह। कार्यक्रम में विद्यार्थी मैत्री बनाई विभिन्न खेल, प्रश्नोत्तर, अंतरक्रिया तथा सहभागितामूलक विधि गतिविधि संचालन कैगिल रह। खेल खेलती प्रश्न कर्ती और छलफल कर्ती सीखना वातावरण बनल पाछा विद्यार्थी विषय वस्तु सहज व रूचिपूर्वक ग्रहण करलबाट। कार्यक्रम से विद्यार्थी हुकनहन अपनो आपन परिवार से प्रत्यक्ष जोरगिरक नागरिक तथा कानूनी विषय बारे प्रारंभिक ज्ञान देना के संग अपना शिक्षक बाट और जहन से बटना, आवश्यक पलक अवस्था में सहयोग करना व समाजप्रति जिम्मेवार बनना, सोच विचार विकास कर समेत प्रेरित कर लक आयोजक जनैलवा। नागरिकता प्रभावित मनै संजाल से नागरिकता तथा कानूनी पहचान के विषय में जनचेतना अभिवृद्धि, अधिकार के लाग पैरवी, कानूनी तथा नीतिगत विषय में सचेतना व सरोकार वाला होकर से सहकार्यकर्ती एलवा। विशेष कैक नागरिकता के अधिकार से प्रभावित समुदाय जानकारी तथा सहयोग पुगैना व नागरिकता संबंधी समस्या तथा विभेद के विषय में आवाज उठैना काम में संस्था भूमिका खेलती अल्बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश में मानव अधिकार के अवस्था बहुआयामिक चुनौती से गुजरती रलग देखैलबा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सार्वजनिक अलग प्रतिवेदन से प्रदेश में गरीबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा के संग महिला तथा बाल बालिका ऊपर हुईना हिंसा, जातीय विभेद, न्याय में नपहुंच, विपद, श्रम तथा आपरवासन लगायत के सवाल मानव अधिकार संरक्षण के प्रमुख चुनौती के रूप में देखी लख। आयोग के सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय सार्वजनिक अलग आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश में भौगोलिक तथा सामाजिक विविधता के संग मानव अधिकार उपभोग में असमानता कायम बा। विशेषकर दुर्गम क्षेत्र के नागरिक आधारभूत सेवा प्राप्त कर समेत विविध कठिनाई भाग प्रतिरलक प्रतिवेदन से औल्यागिल बा। ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल विपद के बेला तो गिलक से फे धीर मूल्य लेकर ग्यास बिक्री करुया हुकन कानूनी कार्रवाई कर सरकार से माग कलबा। महासंघ भोटे कोशी के बाढ़ी व कृष्ण भिरके डगर कटान से राजधानी जोड़ना राजमार्ग अवरोध हुईबेर उपत्यका के ग्यास आपूर्ति मन समस्या ऐलक जनैलबा। महासंघ वास्तविक समस्या में पलक उपभोक्ता प्राथमिकता में धरकन ग्यास बिक्री वितरण कर देशभर के विक्रेता हुकन अपील करलबा। खोज खबर में फेरफे विश्राम पाछा एनी निवाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आंखा का रोगी अत्यंत जरूरी सूचना
2: नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091575204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98484-57875।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइँ, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: खोज खबर मा फेरफेर स्वागत बा। कैलाली के कैलारी गाउँपालिका 5 बैजपुरमन 1500 के कैलारी आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आयलसँग स्थानीय खुशी हिलबाट अस्पताल सञ्चालनमा आयलसँग स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देख्न समेत उपचार गर गाउँपालिका बाहिर जाइपना बाध्यता अन्त्य हुइलक जनैती हुक्र खुशी हुइलक फिट गाउँपालिका के प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर धामी अस्पताल सञ्चालन के लाग पालिका आवश्यक जनशक्ति उपकरण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन मिलैलक वर्षे गुणस्तरीय सेवा प्रदान कर्तिरलक बटुलाबाट स्थानीय अस्पताल सञ्चालनमा अहिलेक विषय हेन महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूपमा लेलबाट गाउँपालिका 5 बैजपुर के प्रेमदेवी चौधरी कल स्वास्थ्यमा कौन अप्ठ्यारो होगिल कलसे उपचार गर धनगरी लगायत के अस्पतालमा जाइपना बाध्यता आप अन्त्य हुइलबा घर लग अस्पताल के सुविधा हुइलबा छ एकदम सहज हुइलबा उपचार कराई आवत जावत करबे लग्ना समय व खर्च जोगना हुइलबा। गाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य हुइलक बटोइते स्थानीय चरणलाल चौधरी खुशी व्यक्त कलबाट। गाउँपालिका के अध्यक्ष राम समज चौधरी रु 18,52,63,869 के लागतमा न अस्पताल भवन निर्माण हुइलक जनैती अस्पताल सञ्चालन आइलके सँग इमर्जेन्सी भिडियो एक्सरे लगायतके सेवा विस्तारमा अहिलक जानकारी गराइलबाट। तेस्रो संस्करण के एसीसी प्रीमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनलमा नेपाल आज नेपाल हो युएनटेड अरब इमिरेट्स भिर्तीबा नेपाल हो युए 20 के फाइनल खेल मलेसिया के क्वालम्बुर स्थित बायुमास ओभलमन आज बिहान के 7:15 से शुरू हिलबा। दुनू टोली दोस्रो चो एसीसी प्रीमियर कप के उपाधि जित्ना लक्ष्य मनबाट नेपाल सन् 2023 हुइलक पहिल संस्करण मन युई हन 7 विकेट लेखन हेरैती उपाधि हात पर्ल रह इहे चो उपाधि विजेता टोली कलहक एसिया कप मन स्थान बनिना हुइलक वर्षे फाइनल दुनू टोली के महत्वपूर्ण बा। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विकेट मन नेपाल व युए 20 हालसम्म 9 खेल हुइलबा। नेपाल 11 व युए 8 खेल जितलबा। पाछक 5 खेलमा नेपाल 3 खेल जितलबा। वस्तक पहिल संस्करण के नेपाल भलिबल लिग के फाइनल प्रवेश के लाग आज काठमाडौँ रेड्स ओ कर्णाली शिवराज बीच प्रतिस्पर्धा हुइटीबा। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिसर के कवर हलमन आज संध्या के 6 बजे खेल हुइयाबा। यह समाचार के संग खोज खबर और अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। जानकी जेसी सेरसुआ बाढ़ी में बेपत्ता हुईलक चार परिवार हं प्रति परिवार 10,000 नकद सहयोग आज पांच प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना बाल दिवस के अवसर में टीकापुर में चित्रकला प्रतियोगिता प्रतियोगिता में सरस्वती मावी बनगांव के छात्रा अनुश्री करायत प्रथम एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में आज नेपाल यूए भिर्ती नेपाल भलिबल लीग के फाइनल में आज लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 12 बजे नेपाली भाषा में खबर संक्षेप सुन सकबी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराई हन धन्यवाद देती मैं गीता फिर विदा हुई थी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
7: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
6: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
7: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा थियो ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झ्वाला आन्ला से त लड़का सामान निहराए
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झ्वाला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रदगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झ्वाला आन्ला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेन्सिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कहक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं।

0: काला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि। त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाइवाईमै किन हाल्ने। 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाइवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानु है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल, साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 98 48 40 22 41।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हैं, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैवे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाइं।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
6: दिदी, तीज पनि आउन लाग्यो। इस पारी को तीज मा नया गहना किन्ने सोच छ कि छैन?
7: छ नि बहिनी, तर राम्रो राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोज्दै थिए नि।
8: त्यसो भए इन्द्रेणी ज्वेलर्स मा जाऊ न त, त्यहाँ सुन चाँदी का नया नया डिजाइन का गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र बहिनी, अरू के पाइन्छन् त त्यहाँ?
8: त्यहाँ त माइले तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला, झाला, पिचडा, झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्मका नौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोती चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छन् नि।
7: ओहो बहिनी, यति राम्रो सुविधा अब हाम्रै टिकापुरमा रहेको छ। अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ नि?
8: उचित मूल्य, राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो।
7: त्यसो भए ढिलो नगराउन बहिनी, आजै जाऊ।
8: ल जाऊ, तपाईँहरू पनि आफ्नो रुचाइको गहना किन्न इन्द्रेणी ज्वेलर्समा नै आउनुहोस्।
6: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चोक टिकापुर कैलाली, संचालक रन बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9848440019।
9: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? 500 शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
9: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848541436।
0: हिन्दु हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रामलीला झुम्का

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौकन थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
4: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
3: अब किन टाला जानु, सिर्चना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
4: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
3: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
4: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
3: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
4: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095 43893।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्झे 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपना ओकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्दी रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका के वड़ा नम्बर 2, 5, 8 में हात्ती के आतंक बहर्ती दैनिक घर भटकिना के संग धान बाली में क्षति। टीकापुर मन संचालित टीकापुर डांस आइकोन के सेमी फाइनल सम्पन्न 15 जना प्रतियोगी फाइनल में प्रवेश। किस के समय में चोरी हुई सेकना बटुटी नागरिक सचेत प्रहरी के आग्रह ओ यूएन हेराइटी नेपाल प्रीमियर कप चैंपियन एशिया कप मन छनौट। आप खोज खबर विस्तार टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 और वडा नम्बर 5 के विभिन्न ठाउँमा हात्ती करीब 1 महीना थिसी नोक्सानी करती रहलबाट 3 ठो संख्यामा रहलक हात्ती 2 ठो घर भट्काइलबाट कलशे दैनिक रूपमा धान ओ केरा खेतीमा नोक्सान पुगैती रहलबाट टीकापुर नगरपालिका 2 शान्तिनगर टोलके सुडा देवी सिंह हात्ती से 2 चो आकन घर भटकैलक ओ हात्ती घर भटकैल पाछ गोठोमा बहनलक 3 ठो गैया समेत भगलक बटुइलबाट। टीकापुर नगरपालिका 2 के ज्ञानु शाही हाल भारतमा रहलक आपन जेठानी घर फे हात्ती भटका देलक ओ हैरान बनिलक बटुइलबाट। शुक्रबार रातको कलक टीकापुर गौशाला गैयक लागि चारा धरलक गोडाम मन भिट्टा च्याटके मकै धानके भूज खैलबा कलसे सीतापुर स्थित फूलराम चौधरीके धान खेतोमा फेर नोक्सानी पुगैलक गौशालाके हेरालु सरिता चौधरी बटुलबाट। स्थानीय टंकबहादुर विष्ट शुक्रबार सन्ध्या 8 बजे ओ रातक 12 कैक 2 चो हात्ती आकन गाउँ भगाइबेर फे धान बालीमा क्षति कर्सेकलक बटुलबाट। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज से यहाँ अहिलक 3 ठो हात्ती शनिबार कर्णाली किनार मन रहलक खोटेना भुराखानी सामुदायिक वन मन बैठी रहलबाट। वनके चौकीदार लक्ष्मण चौधरी आघक वर्ष मन 5-7 दिन बैठना हात्ती इहेचो 1 महीना पुग बेरफे ठाउँ छरल निहुलक बटुलबाट। रातके समयमा गाउँमा आएका हात्ती घर भट्कैना किसानके धान बाली केरा बाली नष्ट करल पाछ यहाँके नागरिक पीड़ा मनबाट। स्थानीय नागरिक रातके समयमा आगी बार्कन भाँडाकुँडा ठठाकन बैठना कलक कर्मी डाँडाके स्थानीय सिंहराज बुढा मगर जानकारी देलबाट। टीकापुर नगरपालिका 2 के वडाध्यक्ष दीपक बहादुर चौधरी ओडा कार्यालय स्थलगत मुचुल्का बनाक नगरपालिका मार्फत वन कार्यालय सिफारिश कर्क पठैलक बटुलबाट। बर्दे राष्ट्रिय निकुञ्ज के टोली 1 हप्ता आग स्थलगत निरीक्षण कर्कन गैलबा। यहाँ हात्ती से कुछ वर्ष आग 2 जना के ज्यान लेसेकल बाकलसे चितुवा गैडा नीलगाई लगायत के जनावर बस्ती में पैटकन नोक्सान करतीलबाट। टीकापुर क्षेत्रमा पाचक समय चोरीके घटना हुइती रहलबा। कोही मनी निहुइलक मौका छोपक घरके ताला फोर्क घरमा चोरी करना करलक पागिलबा। यहाँके संग मन्दिरमा फे चोरी हुई लागलबा। टीकापुरके बलक नम्बर 23 स्थित सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरके ढोका फुटाकन दान पेटिकाके रकम चोरी हुइलबा। कुछ दिन आग टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 के बलक नम्बर 6 और 9 व्यवसाय क्षेत्र लगायतके स्थानमा चोरी हुइलबा। असिक दैनिक तथा 1-2 दिन बिराकन चोरी हुई लागल पाछ यहाँके नागरिक हुक्र प्रहरी गस्ती बढ़ाई आग्रह फेकलबाट। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर फे टीकापुर क्षेत्रमा पाचक समयमा छुटी छुटी चोरी के घटना हुइटिरलक ओ वाकर अनुसन्धान हुइटिरलक बटुवा गिल्बा। फेरफे अब नेपाली महिला हुक्र महान पर्व हरितालिका 30 पर्व इलकुहर्से यी समयमा फे चोरी के घटना तथा सवारी दुर्घटना हुइसेकना हुइलकुहर्से नागरिक हुकन सचेत रहफे प्रहरी आग्रह कलबा। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रहरी निरीक्षक उमाकान्त जोशी आग्रह कलक फिट। कैलालीकै गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा वृहत वृक्षारोपण अभियान शुरू करगिल बा वातावरण संरक्षण हरियाली प्रवर्धन तथा विश्वविद्यालय परिसर स्वच्छ व वातावरण मैत्री बनिना उद्देश्य लेकन शनिबार वृक्षारोपण कार्यक्रमकै आयोजना करगिल हो। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुइल पाछ विश्वविद्यालय परिसरमा ऐना विद्यार्थी बेराम तथा सर्वसाधारण स्वच्छ वातावरण व शीतलता प्रदान गर्न उद्देश्य लेकन विभिन्न प्रजातिकै वनस्पति तथा फूलके बिरूवा रोपगिलक आयोजक जनैले बा वृक्षारोपण अभियानमा विश्वविद्यालयके पदाधिकारी तथा कर्मचारीके संग सशस्त्र प्रहरी बल विद्यार्थी स्थानीयवासी सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्लब व संघ संस्थाके प्रतिनिधिगणके सहभागिता रह। रोटरी क्लब अफ धनगढीके आयोजना मन रोट्र्याक्ट क्लब अफ धनगढी तथा लायन्स इन इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्स 335 एन अन्तर्गत एरिया नम्बर 5 लगायतकै संस्थाकै सहकार्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम हो। अभियान अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर आँजर पाँजर विभिन्न प्रजातिकै 511 ठो वनस्पति तथा फूलकै बिरूवा रोपगिल बा। पहिला दिनकै वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुइलक मन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुदूरपश्चिम प्रदेश सह महामन्त्री जसु भट्ट खुशी व्यक्त कलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछ ऐने निवाती सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
6: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
7: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
6: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
6: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
7: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
6: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
7: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
9: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
10: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
9: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
10: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
9: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
10: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
9: ईसीजी सेवा
10: डिजिटल एक्सरे सेवा
9: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
10: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-72-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा थारू समुदाय हरेक वर्ष कृष्ण शुक्ल पक्षके पहिल आइतबारके दिन अटवारी पर्व मनैना गर्छ यी वर्षके अटवारी पर्व काल 28 गते आइतबार बा अटवारीमा थारू समुदाय भीमके सम्झनामा व्रत बैठना वो भीमके पूजा आजा गर्ना गर्छ थारू समुदायमा अटवारी पर्व मनैना चलन रहलवा खासकै का थारू समुदाय कृष्ण जन्माष्टमी पाछके शुक्ल पक्षके पहिल आइतबारके दिन व्रत बैठकन यी पर्व मनैना चलन रहलवा आइतबार हुइलक घटना समाजका मनैना हुइलक मर्छ यी पर्व अटवारी कैकन अटवारी कैगिलक याकर जानकार हुक्र बटुइठ अटवारी पर्वमा भीमके पूजा कैजैठ आइतबारके दिन भीम थारू समुदाय भारे गुण लगैलक सहयोग कलक सम्झनामा थारू समुदाय यी पर्व मनैना करलबाट आइतबारके आगक दिन थारू समुदाय दरखाइक लागि मच्छीमार जैना पिठा पिसैना डोनी टेफ्री लगाएकला बनोमा पट्याटुर जैना डोनी टेफ्री लगैना लगायतके अन्य तयारी गर्छ अटवारी पर्वमा रातका व्रत बैठिया व्रतालुङ र दरखैना चलन रहलक जानकी गाउँपालिका आठके रेशमा चौधरी बटुलबाट एक दिन व्रतालुङ र घरके एक ठोक कोनवा बहरीमा लिपपट गर्क रोटी पकाइना गर्छ रोटी पकाइबेर पहिल पटक डरलक रोटी नै चलाक एकतर्फी पकाइना चलन रहलबा जौन रोटी भीम हन चढ़ैना पूजा गर्नकै जैठ रोटी पकास्याकल पाछ सन्ध्या उहर व्रतालुङ र लहाकन पकाएल रोटी फलफूल स्याउ दही खिरा लगायतके खैना चिज आपन दिदी बहिनके लागि छुट्याक पूजा गर्कन खैना गर्लक जानकी आटके मन्टुनी चौधरी बटुलबाट व्रत बैठक औरदिन बिहानका विभिन्न किसिमके परिकार गेडागुरी पकौरी पौक साग लगायत गरी 3, 5 वा 7 थरीके तरकारी पकाइना चलन फेर हल्बा असीक पकास्याकल पाछ व्रतालुङ र फेर नुहाई धुवाई कैकन आपन दिदी बहिनेक भाग छुट्टाकन पूजा गर स्याकल पाछ खाना खैठ ओ व्रत हन आपन व्रत वरिठ खाना खास्याकल पाछ अग्रासन दिए जैना चलन रहलबा दादु भैयाङ्क आपन दिदी बहिना न अग्रासन दिए जाइबेर दादु भैया दिदी बहिनके बीचमन माया प्रेम बढ़ना सद्भाव बहना विश्वास फेर रहलबा थारू समुदाय यी पर्व हन धूमधामके साथ मनैना गर्छ नो भोट नो टिकटकना नाराकेसँग टिकापुरमा सञ्चालित टिकापुर डान्स आइकोन के सेमी फाइनल आज सम्पन्न हुइल्बा आइकोनमा 156 जना प्रतियोगी मध्ये 54 जना प्रतियोगी सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्ल रहल द क्राउन डान्स एण्ड जुम्बा सेन्टरके आयोजनामा आज हुइलक सेमी फाइनल से 15 जना प्रतियोगी हुँक र फाइनल चरणके लागि छनौट करगिलबाट टिकापुर डान्स आइकोनके फाइनल असो 4 गते टिकापुरमा हुइना सेन्टरके सञ्चालन चालक तथा आयोजक अर्जुन विश्वकर्मा जानकारी देलबाट प्रतियोगिता मन प्रथम हुइएन 50,000 दोस्रा हुइएन 25,000 तेस्रा हुइएन 10,000 र चौथो हुइएन 5,000 नगद ट्रफी मेडल लगायतके विभिन्न अवसर प्राप्त गरियाबाट भोटके कारण प्रतिभावान व क्षमतावान बाल बालिका के सही मूल्याङ्कन नि हो क प्रतियोगिता से बाहेर हुई पर्ना हुइला कुँवर से प्रतिभा के सही मूल्याङ्कन हुएकै नो भोट नो टिकट के अवधारणा सहित प्रतियोगिता सञ्चालन परगिलक उहाँ जानकारी देलबाट कैलालीके विभिन्न ठाउँसे भारतसे भन्सार छलिकैको अवैध रूपमा लानगिलक करिब 75,800 रूपियाँ बराबरके सामान प्रहरी पक्रलबा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीके माटहटके कार्यालयसे खटगिलक प्रहरीके टोली विभिन्न ठाउँसे व्यवहारी व्यवस्थामा रहलक चिनी चना पानीपुरी प्लास्टिक झिल्ली लगायतके सामान फेला पर्लक हो प्रहरीके अनुसार पकड़गिलक सामान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्क नियन्त्रणमा लेगिल्बा खोज खबरमा एक गरिक विश्राम विश्राम पा छैनिनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
11: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
12: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
11: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
12: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
11: अब त म ढुक्क।
13: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
12: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
15: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
14: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग को समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
15: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार।
14: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड, टिकापुर, कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। भोटीकोशी बाढ़ी पाछा ध्वस्त बनलक चीन संघ के स्वागरी नाकहा फेर संचालनमा लन्ना तयारी। दुनू देश के सरकार कर्लबाट रसुवा गरी थेसिए स्याफ्रू बेसीसम्म चीन के सहयोगमा सड़क निर्माण कर्क यी नाका फेर संचालनका योजना। दुनू देश सकारात्मक डेगिल्बा। विशेष पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लामसाल रसुवा गरी नाका थेसे स्याफ्रू बेसीसम्म सड़क निर्माण के लाग सहयोग गर चीन सरकार से प्रस्ताव कर सेक्लको सकारात्मक रहलक बटुलबाट। प्रकाशन हुइटी रलक जानकारी कार्यालयबाट उहाँ हुक्र सहयोग गर्न मौखिक प्रतिबद्धता जना सेकलबाट लिखित सम्झौता हो सेकलबा उहाँ कल तर वाकर तयारी उहाँ हुक्र कर्ती रलक फे बुझल बाटी नियमित रूपमा सम्वाद समेत ट्विटी रहलबा उहाँ कल। गोदावरी राजमार्गमन पहिरो के जोखिम ओ 2072 साल के भूकम्प पाछ तातोफानी क्षेत्र के पूर्वाधार क्षति पुगल पाछ रसुवागढ़ी केरूङ नाकाहाना चीन संघ के प्रमुख वैकल्पिक मार्ग के रूपमा आघस सार्गिल रह तर 10 भडौमन ऐलक बाढ़ी से रसुवा उहरके नाकामन समेत क्षति पुगल पाछ मुख्य व्यापारिक सम्पर्क नै ध्वस्त हुइल रह। ऊ नेपाल ओ चीन के व्यापारी केन्द्र कलहक नाही धीर बस्ती फेबा ओहमारा आब स्याफुसे सेफे आघ रसुवागढ़ीसम्म अस्थायी ट्र्याक से काम चलैना तयारी बा उहाँ कल। दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सड़क बनाइ परी तर आबक लागि अस्थायी ट्र्याक से काम चल्ती बा। नेपाल एसीसी प्रिमियर कप के फाइनल मन युएहान 44 रन लेक हेरेटी एसिया कप के लागि छनौट ठिल्बा। एसिया के वायुमाज ओभर मन नेपाल 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाकन 313 रन बनाइल। ज्याकर आसिफ शेख 102 रन बनाइल। युएई 49.1 ओभरमा 269 रनमा अल आउट हुइल। ओ करण केसी नेपालकै लागि 3 विकेट लेल। नेपाल मलेसिया के वायुमास ओभरमा हुलक फाइनल खेलमन नेपाल युए उपर 44 रन के जीत हासिल करलक हो। नेपाल डेलक 314 रन के लक्ष्य 65 युए 49.1 ओभरमा 269 रन मन अल आउट हिल। युएई के लाक राहुल चोपरा अभिजित शतक बनाइल पाछ पर्याप्त हुई स्याकल। तनिष सूरी 42 रन बनाइल। कप्तान अहिर प्रीत भाटिया 33 रन बनेल, नेपाल केला करण केसी 3 विकेट लेल, ललितो राजवंशी 2 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने, रोहित पौडेल, गुलशन झा, बसीर अहमद ओ दिपेन्द्र सिंह एरी 1-1 विकेट लेल। यस समाचारके संग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जेति जेति खबरके मुख्य शीर्षक फेर्से। टीकापुर नगरपालिकाकै वडा नम्बर 2, 5, 8 हात्तीकै आतंक बढ़ती, दैनिक घर फटकिनासँग धान बालीमा नै क्षति। टीकापुरमा संचालित टीकापुर डान्स आइकनकै सेमी फाइनल सम्पन्न, 15 जना प्रतियोगी फाइनलमा प्रवेश। चीजकै समयमा चोरी भइसक्ना बटुटी नागरिक सचेत रह प्रहरीकै आग्रह, ओ युए हन हेराइटी नेपाल प्रिमियर कप च्याम्पियन एसिया कपमा नै छनौट। लिता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्रह, और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सक्दी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मैं गीता फे विदाई दू, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दी रवि, राम राम।
16: आँखा का रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना, नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
17: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
18: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
17: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98-68-55-10-00।
19: ए बहिनी, तीज पनि आउन लाग्यो, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच छ कि छैन?
20: छ नि दिदी, राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोल्दै थिए।
19: त्यसो भए नरेश ज्वेलर्स जाउँ न त, त्यहाँ सुनचाँदीका नयाँ नयाँ डिजाइनका गहना पाइन्छन् रे।
20: ए हो र, अरू के पाइन्छ नि त्यहाँ?
19: त्यहाँ त हार, तिलहरी, मंगलसूत्र, झुम्का, औठी, चुरा लगायतका विभिन्न डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छ नि।
20: ओहो, यति राम्रो सुविधा! अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ?
19: उचित मूल्य, राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो।
20: त्यसो भए ढिलो नगरौ न दिदी, आजै जाउँ।
19: तपाईहरू पनि आफ्नो रोजाईको गहना किन्न नरेश ज्वेलर्समै आउनुहोस्।
21: विश्वास र रोजाई अब एउटै ठाउँमा,
20: नरेश ज्वेलर्स, टीकापुर नगरपालिका कार्यालयको पछाडि पुरानो एनसेल डिलरमा, सञ्चालक उत्सव साहु, सम्पर्क नम्बर 98-48-43-32-41।
16: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
22: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
16: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै बो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट। आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई, कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5146।

0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं। ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो सकल बाजे आप हली भुआस कर दिए पड़ल है समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फिर सुननी पड़ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाहे ये बाल विवाह करनी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर उही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थी उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकर वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदाय के महान पर्व अटवारी के सुखद अवसर में समस्त औडावासी दादू भैया और दीदी भैया हुकन म सुख शांति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती। जानकी गांव पालिका ओडा नंबर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली का

0: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदाय के महान पर्व अटवारी के सुखद अवसर में समस्त अवडावासी दादू भैया और दीदी भैया हुकन म सुख शांति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती। जानकी गांव पालिका वडा नंबर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली। हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
1: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली, संचालक दुर्बा सुनार।